आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 7 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: आओ
1: देखो हम पर शक ना लाओ, अब जो मिलना।
0: अच्छा जी,
1: अब जो मिलना बांध के सहरा ही मिलना सरकार।
0: तो अगले इतवार
1: जी सरकार।

तो कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। भैरो बिकम बैरन एंड बैरन बिकम भैरो बिकॉज देयर माइंड्स आर वेरी नैरो।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

बंधुओं बजाइए ढोल और बजाइए बाजा।

हाँ तो सज्जनों सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, हाँ, अरे अरे

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 11 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.
1: गोड़ा ये क्या रहा? गोड़ा चतुर एक पैर है ना, या गोड़ा बोला या चतुर बोला गा।
2: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: बरसों बाद ऊंट में निकली हूं। ऐसा लगता है कि वो किसी औषधि की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनार जी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: प्यार का तोहफा तेरा।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 5 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं स्टार गीत मस्ती आरजे अमन के साथ। कल सोमवार को सुनिए स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल शो। इसके लिए कीजिए गाने की मैसेज फरमाइश रेडियो हॉटस्टार के ऐप से और वॉइस रिकॉर्डिंग वाली फरमाइश व्हाट्सएप नंबर 91 35 84 12 32 पे। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे प्यारे दीवाने और दीवानियों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन आ चुका हूं लेकर आज का ये यानी के गीत मस्ती का प्रोग्राम, क्योंकि आज है रविवार यानी संडे का, और वो है यानी कि चौथा संडे इस महीने का आखिरी संडे है। अगर यानी पांचवा संडे होता तो अंताक्षरी जरूर होता है, लेकिन यानी पांचवा संडे नहीं आ रहा है इस बार यानी चार ही संडे है, तो इस बार हम यानी गीत मस्ती तक ही रहेंगे। फिलहाल मेरे पसंद के गीत को एंजॉय कीजिए और आते हैं इस गीत के बाद आप सभी का वेलकम करने।

0: बिल्कुल न जाने एक निगाह में क्या ले गया कोई। वैसे बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है सभी दोस्तों का। सबसे पहले जुड़ने वाले हमेशा की तरह हमारे सरफू भाई सरफराज पटेल जी जुड़ चुके हैं साउथ अफ्रीका से। वेलकम करते हैं। मुबारक हुसैन जी भाई, मुबारक हो, आप जुड़ गए हैं, वेलकम है आपका भी। अब विष्णु चंद्र जी आपका भी वेलकम करते हैं। विजय कुमार जी वेलकम करते हैं आपका भी। सुनीता गोप जी आपका भी वेलकम है। और हमारे ये सत्येंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है सत्येंद्र सिंह जी। एम ताहिर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। हमारी नंदनी माँ जी जुड़ चुकी हैं, आपका भी वेलकम है माँ जी। ज्योति खटवड़े जी जुड़ चुकी हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और अशोक देशमुख जी वेलकम है, वेलकम वेलकम वेलकम। जितने भी दोस्त चोरी चोरी चुपके चुपके सुनते हैं सभी का वेलकम करते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज के गीत मस्ती से। तो सबसे पहले आपको गीत मस्ती के बारे में थोड़ा सा जानकारी तो बताना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले इसे सुनिए।
1: गीत मस्ती विद आरजे अमन के साथ सिर्फ रेडियो हॉटस्टार पर। आज का शो होने वाला है गानों, गेम्स और मस्ती से भरपूर। यहाँ सिर्फ गाने सुनने नहीं है बल्कि हर राउंड में अपनी म्यूजिकल नॉलेज का टेस्ट भी लेना है। गीत मस्ती में होंगी चार मजेदार राउंड। राउंड वन म्यूजिक गेस राउंड, सिर्फ म्यूजिक बजेगा और आपको पहचानना होगा कि ये किस गाने की धुन है। देखते हैं कौन सबसे जल्दी सही जवाब देता है। राउंड टू फास्ट फॉरवर्ड राउंड, गाना चलेगा फास्ट फॉरवर्ड में, गाने की स्पीड तेज होगी लेकिन आपको पहचानना होगा कि आखिर ये कौन सा गाना है। राउंड थ्री उल्टा पुल्टा सिंग एंड गेस, अब गाने के बोल होंगे पूरे उल्टे पुल्टे, आपको पहचानना होगा कि असली गाना कौन सा है। राउंड फोर रिवर्स सॉन्ग गेस, और अब आएगा सबसे मजेदार ट्विस्ट, गाने के बोल होंगे रिवर्स यानी उल्टे क्रम में, आपको उन उल्टे बोलों को सुनकर पहचानना होगा कि ये किस गाने की बोल है। गीत मस्ती आरजे अमन के साथ सिर्फ रेडियो हॉटस्टार पर। गानों की मस्ती, गेम्स का ट्विस्ट और मनोरंजन फुल ऑन। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।
0: बिल्कुल, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इसमें यानी कि चार राउंड होने वाले हैं। सबसे पहला तो म्यूजिक राउंड होने वाला है। आपको ये म्यूजिक

0: की धुन सुनाई जाएंगी और धुन को पहचान कर गीत के बोल लिख कर भेजना होगा। आपको सिर्फ इन व्हाट्सएप नंबर जो है 9135841232 पे जो सेकंड राउंड होगा वो फास्ट फॉरवर्ड राउंड होगा, यानी कि गाने बहुत आपको इन तेजी से सुनाए जाएंगे, उसको समझकर गाने का बोल आपको लिख कर भेजना होगा। व्हाट्सएप नंबर जो है 9135841232 पे। उसके बाद होगा जो थर्ड राउंड, उल्टा पुल्टा राउंड, उसमें गाने के बोल उल्टे पुल्टे रहेंगे, आपको सीधे करके भेजने होंगे। व्हाट्सएप नंबर 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे। और आखिरी राउंड होगा वो होगा रिवर्स राउंड, गाने बिल्कुल उल्टे रहेंगे, आपको सीधा करके भेजना पड़ेगा व्हाट्सएप नंबर पर ही जो है 9135841232 पे। फिलहाल शुरू करते हैं आज का पहला राउंड।
1: दोस्तों अब शुरू हो रहा है गीत मस्ती का पहला राउंड, म्यूजिक गेस्ट राउंड। इस राउंड में आपको सुनाया जाएगा सिर्फ गाने का म्यूजिक। ध्यान से सुनिए और पहचानिए कि आखिर ये किस गाने का म्यूजिक है। इस राउंड के जवाब आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पर भेजने होंगे। अपने जवाब के साथ साथ आप अपनी पसंद के गाने की रिक्वेस्ट भी जरूर भेजें। तो तैयार हो जाइए, ध्यान से सुनिए और पहचानिए अपना गाना। म्यूजिक गेस राउंड शुरू करते हैं।
0: ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक मेरी पसंद का और गाने एंजॉय कीजिए और इसी गाने से मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सबसे पहला राउंड। लेट्स प्ले नाउ।
2: बैठ जा, खड़ी हो जा,

दोस्तों, आपने सुना गाने का म्यूजिक, अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारी व्हाट्सएप नंबर 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे।

बिल्कुल जो भी कहना है भैया नहीं करते रहे। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले मेरे पास जवाब किन का आया हुआ है, और सबसे पहले जवाब तो मेरे पास पहुँचा हुआ है सुनील कुमार जी का। ओहो, एम ताहिर जी भी हैं, और हमारे यानी कि सरबजीत सैदी जी भी हैं, निशांत रायबोले जी हैं, और हमारे किन का सही थी यानी दीपक कुमार गायकवाड़ जी का भी जवाब सही है, और कुंता बेनी जी का भी जवाब सही है। बाकी दोस्तों का जवाब गलत है, उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। सीधे कॉल लगाता हूँ सुनील कुमार जी को।

0: अमन भैया नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत वेलकम। मैं पहला ही बात में क्या बात है, नंबर लग गया आपका एक नंबर में।
0: जी जी, सब आपके प्यार की मेहरबानी है।
1: अरे लग रहा है कि पूरा तैयारी के साथ बैठे हुए हैं आज।
0: नहीं नहीं, वैसे ही हम अंदाजे से मार दिया आज।
1: ओहो, तो जवाब बता दीजिए।
0: जवाब है मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है।
1: जवाब तो बिल्कुल सही है आपका। और तो ये भी बता दीजिए कि आज गाना कौन सा सुनना चाहते हैं
0: आप? ये उनका नाम तो याद आ नहीं रहा, ये नागन सा रूप है तेरा।
1: ओके, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।
0: धन्यवाद सर।

0: गगन को डोर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन।
2: हाय हाय हाय।
1: अरे ये नागन डसले तो क्या कहना।

0: दोस्तों, आपने सुना गाने का म्यूजिक। अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारी व्हाट्सएप नंबर 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दो दीवाना। बजाते रहो।
1: तू जिंदा लौट कर नहीं जाएगा इस महल से।
2: अच्छा।

वेलकम बैक। एक चीज मैं और बता सकता हूँ, क्योंकि अगर इन दूसरा मैसेज भेजेगा तो आपका मैसेज चला जाएगा ऊपर। गाने का बोल यानी कि लिखने के साथ मैं आपको बताता हूँ, अपने जवाब के बाद आप अपने मैसेज को एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ गाने का बोल लिखने के लिए, जवाब को एडिट करने के लिए नहीं, क्योंकि मेरी सब पे है, यानी कि नजर है आपका, आपने जवाब क्या भेजा है। इसलिए आपने जो मैसेज को एडिट करके सिर्फ उसमें गाने ऐड कर सकते हैं जो गाना आपको सुनना है। दोबारा मैसेज आपको नहीं करना है। फिलहाल मेरे पास मैसेज पहुंचा है कुंता बिनी जी का, एम इन ताहिर जी का, और यानी कृष्णील कुमार जी का, दीपक कुमार गायकवाड़ जी का, और यानी अशोक देशमुख जी का, जाकिर खान जी का, और विष्णु जी का, पीपुरा जी का, संजय पटेल जी का, सीता गोप जी का, और काजल धक्का जी का, ज्योति खटवड़ जी का, सरोजी सेठ जी का, रूपचंद जी का, राधाकृष्ण गोप जी का, अब्दुल जब्बार जी का, निशांत राय बोले जी का, इस्माइल खान जी का, और सत्येंद्र सिंह जी का। तो फिलहाल सीधे कॉल लगाते हैं कुंता बिनी जी को।

0: बहुत बहुत वेलकम वेलकम वेलकम है, कैसी हैं आप?
1: थैंक यू सर, थैंक यू, मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाइए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग।
0: बहुत जल्दी नंबर लग गया आज आपका, क्या बात है, लग रहा है कि पूरा मूड में है आज। गाना भी अच्छा लग रहा है।
1: बिल्कुल सर,
0: ओ मेरी महबूबा।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल।
0: तो फिलहाल ये बता दीजिए कि आज इसका जवाब क्या है?
1: सर एक मिनट
0: देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए, नो प्रॉब्लम।
1: हेलो, हाँ जी, पास वो आने लगे जरा।
0: यस यस यस। और गाना सुनना है ओ मेरी महबूबा, है ना?
1: ओ मेरी महबूबा। हाँ जी,
0: तो अगर गुनगुनाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, गुनगुनाती बहुत अच्छा है।
1: सर ये गाना ना, मैं कोई गाना मेरे मतलब को होगा मैं जरूर सुनाऊंगी।
0: अच्छा ओके, चलिए सुनाते हैं फिलहाल इस गाने को।

दोस्तों, आपने सुना गाने का म्यूजिक, अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारी व्हाट्सएप नंबर 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना।

0: बचना मुश्किल। वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। मेरे पास बहुत सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले तो मैसेज पहुंचा हुआ है ज्योति खटवड़े जी का। ओके ज्योति जी और सोनू गौतम जी हैं, लेकिन ताहिर जी हैं, सरवजीत सेठ जी हैं, रूपचंद जी हैं, दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, इस्माइल खान जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, जाकिर खान जी हैं, रवि महाराज जी हैं, संजय पटेल जी हैं, निशांत रायबोले जी हैं, और नसीर अंसारी जी और सत्येंद्र जी हैं। और तो फिलहाल सीधे कॉल लगाते हैं ज्योति जी को। ज्योति खटवड़े जी आपका बहुत बहुत वेलकम है गीत मस्ती में। कैसी हैं आप? आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी।
1: मैं ठीक हूँ।
0: ओके जी, मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ, आपकी दुआएं हैं। तो जवाब बता दीजिए सबसे पहले मुझे।
1: वो नजरें मिली,
0: नजरें मिली दिल धड़का है ना। बिल्कुल हाँ। सही जवाब है। ओके, गाना कौन सा सुनना चाहती है?
1: वो सड़क मूवी का है।
0: तो बता दीजिए गाना।
1: तेरे दिल पे मेरा
0: जी
1: सुना है, तेरे दिल पे मेरा।
0: ओके, तो मेल में सुनना चाहती हैं या फीमेल में?
1: आपको जो पसंद आए हो,
0: आप जो कहिएगा वही सुना दूंगा, क्योंकि दोनों है मेरे पास।
1: वही फीमेल का सुना
0: दी। ओके, सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए।

0: क्या गाना है?
1: दोस्तों, आपने सुना गाने का म्यूजिक, अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारी व्हाट्सएप नंबर 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

0: ट्विटर पर सबसे पहले मैसेज पहुंचा है एम ताहिर जी का, सोनू गौतम जी का, दीपक जी का, सुनील कुमार जी का, रवि मोहर जी का, रूपचंद जी का, रंजीत जी का, मनीषा जी का, निशांत दैबोल जी का और विष्णु जी का, सर्वजीत सेठी जी का। तो सीधे कॉल लगाते हैं एम ताहिर जी को। वालेकुम सलाम।
1: हेलो
0: जी। हेलो, और कैसे हैं एम ताहिर जी?
1: जी सर, बस सर सब बढ़िया है, थोड़ा गला नासाज हो गया सर।
0: अरे क्या हो गया है?
1: थोड़ा सर मौसम में, मौसम का असर है, मौसम का जादू है, क्योंकि बारिश में थोड़ा सा भीग गए।
0: जादू है मितवा।
1: और ऊपर से आइसक्रीम हो गई सर।
0: ओहो, वो क्या बोलते हैं, यानी सोने पे सुहागा,
1: बेशक।
0: है ना, चलिए अच्छी बात है, ये भी यानी ठीक हो जाएगा, है कि नहीं?
1: जी जी।
0: लेकिन हाँ एक चीज तो है, मैं यानी
1: जी सर,
0: मतलब यानी कि ठंडे के मौसम में वो यानी कि कोल्ड ड्रिंक पीना और आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और होता है। सच में मैं तो खाया हूँ,
1: बस कुछ
0: मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: यही तो कहानी थी सर, कुछ दोस्तों की यही चाहत थी कि आज और इसी समय लेनी, भीगते भीगते मैंने चलिए एज यू लाइक।
0: चलिए अच्छी बात है,
1: बस चलिए कोई बात नहीं, उनके लिए भी करना पड़ता है, दोस्तों की सुननी पड़ती सर जी।
0: तो पहले जवाब बता दीजिए।
1: और सर, सर मुझे रात दिन आपकी पसंदीदा सॉन्ग है ये।
0: हाँ, ये तो गाना बढ़िया है ये। फिलहाल आप क्या
1: सुनना चाहते हैं? बहुत मस्त गाना सर, तू लड़की नंबर वन है।
0: ओके, और किसी को डेडिकेट भी करना है?
1: बस सर आप जानते हो मैजिकल गर्ल,
0: जानता हूँ। फिलहाल एंजॉय कीजिए।
1: थैंक यू सर।
0: एक चीज तो मैं बताना भूल गया कि आज हमारे आत्माराम पांडे जी का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप जियो।

दोस्तों, आपने सुना गाने का म्यूजिक, अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें। हमारी व्हाट्सएप नंबर 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे जवान।

0: जी वो लड़की नंबर वन है आपकी भाई, यानी कि एम ताहिर जी, वो आपकी मैजिकल गर्ल है ना, इसलिए नंबर वन है जहाँ तक मुझे याद है।
1: ओ काहे इतना तरसाए, ओ काहे इतना।
0: और मेरी जो सुंदरता की मुरत जी है ना, वो उनकी तो कमाल है, वो तो क्या ही बताए, नंबर वन है, मतलब

फिलहाल मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। सबसे पहले तो मिसाल अंगद जी, अच्छा मिसाल अंगद जी के बाद है सोनू गौतम जी हैं, एम ताहिर जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, रंजीत जी हैं, अरुण गोयल जी हैं, ज्योति खटवंडे जी हैं, दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, जाकिर खान जी हैं, सरबजीत सैडी जी हैं, एक साहब और भी हैं, क्या नाम है, नजमुद्दीन साकिब जी, अच्छा नजमुद्दीन साकिब जी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और निशांत राय बोले जी,

0: मिसाल अंगद जी बहुत बहुत वेलकम है आपका गीत मस्ती में।
1: बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी।
0: और कैसे हैं?
1: बहुत बहुत अच्छे है। आपका कार्यक्रम ही सुन रहे थे और आज दिन भर रेडियो हॉटस्टार ही सुन रहा था। जो 5-4 बजे का आपकी जो हेलो फरमाइश कार्यक्रम था वो बहुत बेहतरीन लगा मुझे।
0: थैंक यू सो मच।
1: बहुत अच्छा लगा। बहुत आज के जितने भी गाने मैंने आज रविवार का पूरा फायदा उठा लिया संडे का।
0: अच्छा।
1: क्योंकि आज काम भी कर रहा था और गाने भी इतने अच्छे आज सुनने को मिले रेडियो हॉटस्टार पर। जो आज जितना भी काम किया मुझे बिल्कुल थकान बिल्कुल महसूस नहीं हुई।
0: अच्छा।
1: बहुत अच्छा लगा।
0: चलिए अच्छी बात है, खुशी की बात है कि भाई आप लोग अपना समय रेडियो हॉटस्टार को देते हैं। लेकिन बाकी सभी कहाँ गायब हो गए जी आपके यहाँ? क्या
1: बाकी तो आप गजानन सालोकार जी का मेरा फोन हो रहा है।
0: हमें दिखते हैं एक तो आप दिखते हैं, आत्मराम पाटिल जी दिखते हैं, अशोक देशमुख जी दिखते हैं और करीब करीब
1: फुले भक्त संजीव भी बीच बीच में आते हैं,
0: कभी कभी आते हैं। बाकी लोग कभी कभी आते हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो गए भाई, सभी का मुझे इंतजार है।
1: बिल्कुल। मैंने हीरामान खिलाड़ी जी को भी मैंने फोन मेरा रहता है एक करने के लिए, लेकिन उनका कुछ काम चल रहा है इसलिए वो कह रहे कि मुझे काम है। लेकिन मैंने कुछ
0: एक आदमी का काम चल रहा है, सारे का काम चल रहा है, सभी का टोटल
1: नहीं सभी का हो सकता है। बिल्कुल
0: एक दो आदमी का काम हो,
1: लेकिन हम
0: लेकिन सभी बिल्कुल
1: नहीं थे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, रेडियो हॉटस्टार जैसा प्लेटफॉर्म और कहीं आपको मिल भी नहीं सकता। मैं सर एकदम कसम से कहता हूँ कि रेडियो हॉटस्टार जैसा प्लेटफॉर्म आपको और किधर ही नहीं मिल सकता। और जिस तरह से आप सभी दोस्तों को, सभी जितने भी रेडियो श्रोता संघ है रेडियो हॉटस्टार के, सभी के साथ इंसाफ करते हैं, सभी के साथ बहुत अच्छे तरह से बातें करते हैं, कोई नाराज नहीं हुई, पूरे आप कोशिश करते हैं। लेकिन इससे भी कुछ होता है तो कुछ कहना नहीं सकते ना। हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि आप रेडियो हॉटस्टार से सभी दोस्त जुड़े।
0: ओके चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिलहाल जवाब बता दीजिए आप मुझे।
1: अभी जो मैंने आपको गाना भेजा है मैं वही गाना सुनना चाहता हूँ। जवाब है जो पूजा भट्ट और आमिर खान की फिल्म है आधा है मोहब्बत भी है।
0: ओके, और आप गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: ये रामचंद्र फिल्म का गाना है, तुझे मांगा था तुझे पाया है।
0: सुनवा दिया।
1: धन्यवाद।

और जुड़ चुके हमसे यहाँ पे रिजवान इन काजमी जी, बहुत बहुत वेलकम है भाई रिजवान काजमी जी। और अनिल कुमार जी हरिद्वार वाले जी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। अमित तपड़े जी भी जुड़े हैं, वेलकम करते हैं। और सभी से कहूंगा कि व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए अगर पार्टिसिपेट करना है तो। रंजीत कुमार जी भी हैं, वेलकम करते हैं आपका भी।

0: अब जाके राम पे यकीन आया है।
1: वाह रे वाह, बात है तू मेरे साथ है। हाय, तारों की रात है, प्यार की बारात है।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं स्टार गीत मस्ती आरजे अमन के साथ। कल सोमवार को सुनिए स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल शो। इसके लिए कीजिए गाने की मैसेज फरमाइश रेडियो हॉटस्टार के ऐप से और वॉइस रिकॉर्डिंग वाली फरमाइश व्हाट्सएप नंबर 91 35 84 12 32 पे। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: वेलकम बैक और अब स्टार्ट करते हैं सेकंड राउंड।
2: दोस्तों, अब शुरू हो रहा है गीत मस्ती का दूसरा राउंड, फास्ट फॉरवर्ड राउंड। इस राउंड में आपको सुनाया जाएगा गाना फास्ट फॉरवर्ड में। ध्यान से सुनिए और पहचानिए कि आखिर ये कौन सा गाना है। इस राउंड के जवाब आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 91358 41 232 यानी 91 35 84 12 32 पर भेजने होंगे। अपने जवाब के साथ साथ आप अपनी पसंद की गाने की रिक्वेस्ट भी जरूर भेजें। तो तैयार हो जाइए, गाना फास्ट फॉरवर्ड में सुनिए और पहचानिए। फास्ट फॉरवर्ड राउंड शुरू करते हैं।

0: मुझे प्यार।
1: दोस्तों, आपने सुना फास्ट फॉरवर्ड गाने के बोल। अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या

0: और मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे सोनू गौतम जी का, मिसाल अंगा जी का, एम ताहिर जी का, प्रियंका जी का, रूपचंद जी का, ज्योति जी का, सतेंद्र वीर सिंह जी जुड़ चुके हैं, यहाँ पे सुनील कुमार जी का, अशोक दसपुर जी का, राहुल इन पासी जी का, दीपक जी का, रंजीत जी का, संजय पटेल जी का, निशांत रायपोली जी का, नजीर अंसारी जी का, और हमारे ये शाकिब जी का एक साहब और भी हैं, मूवी ये क्या नाम इनका, मोबीन खान जी, अच्छा मोबीन खान जी हैं, और कुंता बेनर्जी हैं, हमारी नंदनी माँ जी हैं, और सुनीता गोप जी हैं। ओके फिलहाल तो कॉल लगा लेते हैं सोनू गौतम जी को सबसे पहले।
1: नमस्कार।
0: कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं सर, आप अपने बताएं, क्या हाल चाल है आपके?
0: भाई बहुत जल्दी जवाब आपने भेज दिया, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, एकदम बहुत अच्छे हैं
1: जी, बिल्कुल।
0: तो बता दीजिए जवाब में सबसे पहले उसका क्या है?
1: कसम खा के कहो।
0: ओहो, और
1: जी मुस्कुरा के कहो।
0: हाँ,
1: हमको तुमसे प्यार है।
0: बिल्कुल है, बिल्कुल है। गाना कौन सा सुनना चाहते हैं वो भी बता दीजिए।
1: तेरा दिल मेरे पास रहने दे।
0: रहने दे, रहने दे, एंजॉय कीजिए, गाना प्ले कर दिया।
1: थैंक यू।

दोस्तों, आपने सुना फास्ट फॉरवर्ड गाने के बोल। अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार।

0: टाइम नहीं मिल पाता फीडबैक देने का, तो बराबर सुनते रहे।
1: ओके, आज आपने पार्टिसिपेट किया है और एक नंबर पे आए हुए हैं, बहुत बहुत बधाई हो।
0: जी,
1: तो जवाब बता दीजिए।
0: और आप ठीक है?
1: जी बहुत अच्छे।
0: यही है आँखों में तुम हो।
1: बिल्कुल। और गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
0: गाना में चलो चले मितवा नायक मूवी का।
1: चलो चले मितवा। ओके जी, सुनाऊंगा।
0: ठीक है।
1: ओके ओके।

दोस्तों, आपने सुना फास्ट फॉरवर्ड गाने के बोल। अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

0: और इस बार मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा है काजल झक्का जी का। ओहो, और रवि मोहड़े जी हैं, और सोनू गौतम जी हैं, एम ताहिर जी हैं, मिसाल अंगा जी हैं, दीपक जी हैं, सुनील जी हैं, रूपचंद जी हैं, और इन विष्णु जी हैं, राहुल शुभ जी हैं, निशांत एबरो जी हैं, जाकिर खान जी हैं, कुंता बेनी जी हैं, और सत्येंद्र सिंह जी हैं। सीधे कॉल लगाएंगे हम काजल झक्का जी को। काजल झक्का जी मतलब काजल झा जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है गीत मस्ती में। कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: आजकल कहाँ घूम रही हैं आप?
1: वहाँ कहीं मैं घूमती हूँ,
0: लेकिन डीपी में तो लग रहा है कहीं घूम रही हैं किसी घाट पर।
1: वहाँ पटना गई थी।
0: अच्छा, पटना गई थी। ओहो हो, क्या बात है, यानी कि पटना का सैर कर लिया आपने?
1: हाँ जी, अब पटना से आ गई, अब दूसरे जगह जाना है।
0: अब कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है लग रहा है।
1: हाँ हाँ, 22 तारीख का।
0: अच्छा, चलिए अच्छी बात है, घूमते रहिए, पूरा इंडिया का सैर करते रहिए, और साथ साथ सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बनाते हैं ना।
1: जी जी।
0: ओके, तो जवाब बता दीजिए पहले मुझे,

0: करता हूँ
1: जी।
0: तेरी अदाओं पे मरता हूँ।
1: ओके जी, और गाना कौन सा सुनना चाहती हैं आप?
0: गाना सुना दीजिए मुझे, तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे।
1: ओहो क्या बात है, तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे, है ना? एंजॉय कीजिए, गाना प्ले कर दिया।

0: मेरा दर्पण तुम हो।
1: दोस्तों, आपने सुना फास्ट फॉरवर्ड गाने के बोल। अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

0: बिल्कुल तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। सबसे पहले मैसेज पहुंचा है मेरे पास जाकिर खान जी का, ओके। और सोनू गौतम जी हैं, ताहिर जी हैं, मिसाल अंगा जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, प्रियंका जी हैं, रूपचंद गोयल जी हैं, संजय पटेल जी हैं, गजन सरकार जी हैं, विष्णु चंद्र जी हैं, राहुल सुख जी हैं, निशांत राय बोले जी हैं। तो कॉल लगा लेते हैं जाकिर जी को। भाई जाकिर जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं गीत मस्ती में, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे।
0: तो सबसे पहले जवाब बता दीजिए आप मुझे।
1: गवाह है चांद तारे गवाह है, दामिनी मूवी का
0: गाना कौन सा सुनना है आपको?
1: गाना यही सुना रही
0: सर। अच्छा यही सुनना है।
1: गवाह
0: है चांद तारे, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

0: और यहाँ पे जुड़ी है हमसे रश्मि नामदेव जी। वेलकम करते हैं और आज का इस यानी कि सेकंड राउंड का आखिरी सवाल मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ।
1: ये रहे फास्ट फॉरवर्ड गाने की बोल।

दोस्तों, आपने सुना फास्ट फॉरवर्ड गाने के बोल। अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या

रमेश राहुल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है ये प्रियंका जी का, एम ताहिर जी का, मिसालंका जी का, रूपचंद जी का, दीपक जी का और विष्णु जी का, और राहुल यानी कि शुभ जी का यानी राहुल पासी जी का। तो कॉल लगाते हैं प्रियंका जी को।

0: बहुत बहुत वेलकम है प्रियंका जी, आपका गीत मस्ती में कैसी है?
1: आवाज
0: बहुत आपकी स्लो आ रही है, जरा जोर से बोलिए ना।
1: अरे हमारी आवाज कैसे धीमी आ सकती है, हमारी आवाज तो बहुत बुलंद है।
0: अच्छा, लेकिन आई नहीं है बुलंद फिलहाल, अभी अब ठीक आ रही है।
1: अब आई ना आवाज? हाँ, वो इसका वॉल्यूम थोड़ा लो था ना इसलिए।
0: उसके वॉल्यूम लो से क्या मतलब है? यानी वॉल्यूम लो होगा तो सिर्फ आपको ये कम सुनाई देगा, आप बोलिएगा वही आएगा।
1: हम तो बड़े, आप बताओ कैसे?
0: हाँ, हम भी बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। तो सबसे पहले जवाब
1: लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, इसलिए लड़कियां लड़कों सी नहीं होती।
0: अच्छा, आप क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: जैसा लड़का लड़की का गाना आया है उसी तरीके से हमें एक लड़के का ही गाना सुनना है।
0: बता दीजिए।
1: सारे लड़कों की कर दो शादी, बस एक कवारा रखना।
0: अच्छा।
1: बस एक कवारा रखना, अपना दिल वो किसी को ना दे दे, बचा के उसे आरा रखना।
0: अच्छा जी।
1: बस एक कवारा रखना, चेहरे से लगता है भोला भाला, दिल भर हमारा है भोला भाला।

0: उसको बचाना, अपना दिल वो किसी को ना दे दे, बचक से यारा रखना, बस एक कवारा रखना।
1: ओके,
0: बहुत प्यारा सॉन्ग है, आप लोगों को सुनाती हूँ।

0: ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं स्टार गीत मस्ती आरजे अमन के साथ। कल सोमवार को सुनिए स्टार ओल्ड एज गोल्ड स्पेशल शो। इसके लिए कीजिए गाने की मैसेज फरमाइश रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: दोस्तों, अब शुरू हो रहा है गीत मस्ती का तीसरा राउंड, उल्टा पुल्टा सॉन्ग गेस। इस राउंड में आपको सुनने को मिलेंगे गाने के उल्टे पुल्टे बोल। ध्यान से सुनिए और पहचानिए कि आखिर ये किस गाने के बोल हैं। इस राउंड के जवाब आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पर भेजने होंगे। अपने जवाब के साथ साथ आप अपनी पसंद के गाने की रिक्वेस्ट भी जरूर भेजें। तो तैयार हो जाइए, उल्टे पुल्टे बोल सुनिए और गाना पहचानिए। उल्टा पुल्टा सॉन्ग गेस राउंड शुरू करते हैं।

0: फिलहाल तो मैं यहाँ पे सवाल करूँगा।
1: ये रहे उल्टे पुल्टे गाने के बोल। दीवानी हो गई तुझे देखा तो, कहीं मर न जाऊं तुझे पालूं तो, आया तेरे संग जीने को, तन मन अपना देने लाया, हम जीने लगे तुझे देखा तो, मरने का गम ना हो तुझे पा ले तो।
2: दोस्तों आपने सुना उल्टे पुल्टे गाने के बोल, अब इसके सीधे गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बनाते रहो दिल से।

0: हमारे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा हुआ है एम ताहिर जी का, सोनू गौतम जी का, काजल झका जी का, राहुल शुभ जी का, रूपचंद जी का, गजानंद जी का, विष्णु जी का, राजू राजेश कुमार जी का, जाकिर जी का, संजय पटेल जी का और प्रियंका जी का। ओके, और खोखर विश्वास जी का भी है। तो फिलहाल कॉल लगाते हैं एम ताहिर जी को।
1: सर अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। अगर यानी कि
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया।
0: अगर तीसरा बार नंबर आता है तो सीधे कोई भी गाना सुन सकते हैं जो दिल करेगा।
1: नहीं सर, कोई बात नहीं। जी सर,
0: तो अभी जवाब बता दीजिए मुझे।
1: देखा तुझे तो हो गई दीवानी, फिल्म कोयला।
0: गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: गाना तो वही है सर जो आपकी पसंद है और मेरी पसंद है, समझ कर चांद जिसको आसमान ने रखा है, फिल्म बाजीगर।
0: ओहो क्या बात है, एंजॉय कीजिए।
1: ओके सर, थैंक यू।
0: ओके वेलकम।

0: और मैं तो सवाल करना भूल ही गया था। माय गॉड, फिलहाल सवाल करते हैं।
1: ये रहे उल्टे पुल्टे गाने के बोल। आंखों में तेरी लिखा है अफसाना किसका, अगर इसे समझ सको भी मुझे समझाना। तेरी आंखों में लिखा है किसका अफसाना।
2: दोस्तों, आपने सुना उल्टे पुल्टे गाने के बोल। अब इसके सीधे गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो।

वेलकम बैक। और मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा हमारे नंदनी माँ जी का। ओके, दीपक जी भी है, कुंता जी है, रूपचंद जी है और गजानंद जी है। इतने दोस्तों का सही जवाब आया हुआ है, फिलहाल कॉल लगाते हैं।

0: जी माँ जी, आपको मेरा प्रणाम है।
1: बाबू
0: और कैसी हैं?
1: अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: एकदम बहुत, बस आपका आशीर्वाद है।
1: जी जी, आशीर्वाद हमेशा रहेगा मेरे बाबू से।
0: धन्यवाद धन्यवाद। तो सबसे पहले जवाब बता दीजिए माँ जी।
1: लिखा है तेरी आँखों में।
0: सही जवाब है। और गाना कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: गाना सोनी महिवाल से कोई भी गाना सुना
0: आप, जो बता दीजिए वो सुना देंगे।
1: अच्छा तो वो एक है ना, हाँ
0: बोल दो मीठे बोल, या सोनी मेरी सोनी।
1: हाँ हाँ हाँ, सोनी मेरी सोनी,
0: सोनी मेरी सोनी, सोनी मेरी सोनी, सोनी है ना।
1: हाँ हाँ,
0: ओके एंजॉय कीजिए।

0: फिलहाल आपसे यही सवाल कर लेते हैं कि ताकि आप लोग को जवाब देने में आसानी हो जाए।
1: ये रहे उल्टे पुल्टे गाने के बोल।
2: हंसी मिलते मिलते दिलवादियों में खो गया, क्या करोगे तो। जानी तमन्ना कुछ अनजाने में हो गया, क्या करोगे तो।
3: दोस्तों आपने सुना उल्टे पुल्टे गाने के बोल, अब इसके सीधे गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

0: वेलकम बैक। और इस बार मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा है काजल झक्का जी का, एक बार फिर से ओके। तो बहुत बहुत इनका भी इन वेलकम है। और जागृत जी है, राजू राजेश कुमार जी, विष्णु जी हैं, कुकल विश्वास जी हैं, रंजीत जी हैं, गजानंद जी हैं, रवि महर जी और कुंता बेनी जी हैं। और इतने दोस्तों का जवाब बिल्कुल सही आया हुआ है, बाकी का गलत है तो उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ फिलहाल, कॉल कर लगे। और काजल झका जी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जवाब बता दीजिए प्लीज।
1: जवाब
0: एक मिनट देख लीजिए।
1: हंसी वादियों में।
0: हाँ बिल्कुल सही जवाब है। और क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: हाँ मुझे गाना सुना दीजिए। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी की।
0: मैं जिस दिन भुला दूँ। ओके सुनवा रहा हूँ, एंजॉय कीजिए।
1: थैंक यू,
0: वेलकम जी।

0: और ये रहा यहाँ पे अगला सवाल।
1: ये रहे उल्टे पुल्टे गाने के बोल।
2: हम तो दीवाने हो गए हैं सनम, क्या हम करें? तेरे चेहरे से हटती नहीं नजर, क्या हम करें? नजर नहीं हटती तेरे चेहरे से, हम क्या करें?
3: दोस्तों, आपने सुना उल्टे पुल्टे गाने के बोल। अब इसके सीधे गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

0: जिंदगी।
1: वैसे मैं बस सबसे पहले मैसेज पहुंचा रहा हूं यहां पे सुनील कुमार जी का, एम ताहिर जी का और कैदल झक्का जी का, राजू राजेश कुमार जी का, रूपचंद जी का, राहुल पासी जी का और विष्णु चंद्र जी का, रवि मोहर जी का, गर्जन जी का, रंजीत जी का, निशान रायपुर जी का, जाकिर खान जी का, खोखन विश्वास जी का और संध्या पटेल जी का, अकबर खान जी का। इनका सभी का जवाब बिल्कुल सही और कुछ दोस्तों का जवाब गलत है, उनका नाम मैंने नहीं लिया है। कौन लगाते हैं सुनील कुमार जी?

0: भाई सुनील कुमार जी,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, आप ही से प्रोग्राम का आज आगाज हुआ था और अब आप ही ओके
1: जी,
0: तो फिर अब आप ही का नंबर आ गया है।
1: जी जी, बहुत बढ़िया है। और ये आप ही लोगों का, सभी दोस्तों का प्यार है, जो कि आज मैं बिल्कुल माने जुड़ा हुआ हूँ। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था अभी आधे घंटे के लिए, क्योंकि थोड़ा जरूरी काम था। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे जुड़ के।
0: थैंक यू सो मच। ओके, तो बताइए आज सबसे पहले तो जवाब बता दीजिए आपको।
1: तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। नहीं नहीं, ये नहीं है शायद। हाँ, देखूं क्या?
0: हाँ, मतलब यही के देखिए, यानी क्यों, गाना तो है ये वही कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, मतलब ये। लेकिन
1: जी,
0: लेकिन वो गाना वो मतलब किसी और फिल्म का है, मतलब यानी कि गाना वही है, तेरे चेहरे से नजर
1: यही
0: क्या
1: हम करें।
0: हाँ, ये गाना है, मतलब वो चीज है।
1: लेकिन हाँ, बोल शुरू करते मैंने बोल दिया, लेकिन वैसे मेरा अंदाजा दूसरी तरफ जा रहा था।
0: हाँ, बिल्कुल। खैर
1: जी, जी जी,
0: आपको इन्हें कॉल लग गया है, कोई बात नहीं, फिर यार अपना गाना बता दीजिए।
1: जी, किस्मत में लिखी कोई बात हो तुम।
0: क्या बात है,
1: सुनवा, ये आपकी पसंद का है। और ये गाना क्योंकि अब दोबारा शायद मेरा नंबर ना आए, ये गाना सबसे पहले तो आपको डेडिकेट है। और प्रियंका जी हैं और कायनात जी, हमारे MD ताहिर जी, बहुत माहिर जी, और सोनू गौतम जी, और सभी रेडियो हॉटस्टार सुनने वालों को।
0: ओके।

0: और इस राउंड का आखिरी सवाल भी सुन लीजिए।
1: ये रहे उल्टे पुल्टे गाने के बोल।
2: नहीं हटती तेरे चेहरे से नजर, हम देखें क्या नजारे, मिलके तुझे भी प्यास नहीं घटती, क्या नजारे हम देखें।
1: दोस्तों, आपने सुना उल्टे पुल्टे गाने के बोल। अब इसके सीधे गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास सबसे पहला किनका मैसेज है, जरा मैं देख लेता हूँ। जाकिर खान जी, राजू राजेश कुमार जी, अमित तपड़े जी, रूपचंद जी, प्रियंका जी, रवि मौर्य जी, राहुल सुख जी, अजय भगत जी और विष्णु चंद्र जी, काजल झका जी, कुंता बेन जी और हमारे गजानंद जी, रंजीत जी हैं, अकबर खान जी हैं, सरबजीत शेट्टी जी हैं, सत्येंद्र जी हैं, हमारी नंदनी माँ जी हैं। तो सीधे कॉल लगाते हैं हम जाकिर खान जी को एक बार फिर से। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है जाकिर खान जी। और बताइए
1: जी, थैंक यू।
0: जवाब क्या है?
1: मेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें।
0: हाँ, इस बार आपका जवाब बिल्कुल सही है।
1: जी सर,
0: गाना कौन सा सुनना पसंद करेंगे?
1: तुमसे बढ़कर दुनिया में।
0: ओके, एंजॉय कीजिए।
1: थैंक यू सर।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं स्टार गीत मस्ती आरजे अमन के साथ। कल सोमवार को सुनिए स्टार ओल्ड एज गोल्ड स्पेशल शो। इसके लिए कीजिए गाने की मैसेज फरमाइश रेडियो हॉटस्टार के ऐप से और वॉइस रिकॉर्डिंग वाली फरमाइश व्हाट्सएप नंबर 91 35 84 12 32 पे। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: दोस्तों, अब शुरू हो रहा है गीत मस्ती का चौथा और आखिरी राउंड, रिवर्स सॉन्ग गेस। इस राउंड में आपको सुनने को मिलेंगे गाने के बोल रिवर्स में, यानी बोलों का क्रम उल्टा होगा। ध्यान से सुनिए और पहचानिए कि आखिर ये किस गाने के बोल हैं। इस राउंड के जवाब आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 91 35 84 12 32 पर भेजने होंगे। अपने जवाब के साथ साथ आप अपनी पसंद की गाने की रिक्वेस्ट भी जरूर भेजें। तो तैयार हो जाइए, रिवर्स बोल सुनिए और गाना पहचानिए। रिवर्स सॉन्ग गेस राउंड शुरू करते।

0: फिलहाल यहाँ पे ये रहा सवाल।
1: ये रहे रिवर्स गाने के बोल।
2: निकला थानेदार, मैं थी समझी चोर, हाथी समझी चोर, मैं निकला दिलदार, कैसा तू बाबू छेला।
1: दोस्तों, आपने सुना रिवर्स गाने के बोल। अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9133841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते

मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। सबसे पहले रूपचंद गोयल जी का आया हुआ है और राजू राजेश कुमार जी का, गजानंद जी का, विष्णु जी का, काजल झका जी का, अमित तपड़ जी का, रवि मोहर जी का, रमेश चौहान जी का, जागीर खान जी का और राजेश सैनी जी नाम है शायद, यही आई होप यही नाम हो, राजेश सैनी जी, अकबर खान जी और सत्येंद्र जी हैं और कुंता बेनी जी हैं और एक और नाम है रूबी राजपूत शायद, यही है हमारे घर से। ओके जी, तो फिलहाल यहाँ पे कॉल, मैं कॉल लगाता हूँ रूपचंद गोयल जी को।

0: बहुत बहुत वेलकम करते हैं रूपचंद गोयल जी, कैसे हैं?
1: अच्छे है, बस आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं दिल से।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। तो
1: जी
0: जवाब बता दीजिए प्लीज।
1: छेला बाबू तू कैसा दिलदार निकला, जिसको चोर समझा वो थानेदार निकला।
0: सही जवाब है आपका बिल्कुल। और गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: जी जी गाना सुना, पिक्चर का नाम फकीरा गीत है। आधी सच्ची आधी झूठी तेरी प्रेम कहानी।
0: अच्छा,
1: क्या तो पूरा सच्चा हो जाया फिर कर ले बेईमानी। सजन परे बिया
0: परे
1: भी साजना।

0: फिलहाल अगला सवाल भी कर लेता हूँ यहीं पे।
1: ये रहे रिवर्स गाने के बोल। लिया सुन ओ पिया किया किया किया जो करियो मत फिर मगर लचकी ना कि लचकी कमरिया चमकी ना के चमकी बिजुरिया छनकी ना के छनकी पयालिया। दोस्तों आपने सुना रिवर्स गाने के बोल। अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9133841232 पे और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

फिलहाल मेरे पास मैसेज पहुंचा है, सबसे पहले अकबर खान जी का, राजू राजेश कुमार जी का, ओके, और दीपक जी का है, और विष्णु जी का है, गजानन जी का है, राजेश सिंह सैनी जी का है, और अभी मोहरे जी का है। कॉल लगाते हैं अकबर खान।

0: अकबर खान जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका, कैसे हैं? बहुत दिन बाद आपसे बात हो रही है। वालेकुम
1: अस्सलाम।
0: वालेकुम सलाम। और
1: बढ़िया हो जी, थोड़ा सा खांसी और जुकाम हो रहा है थोड़ा।
0: ओहो, तो अपना ख्याल रखिए प्लीज, क्योंकि मौसम का ये है असर है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और भाई मुझे आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई थी, मतलब मैं तो भूलता ही नहीं हूँ वो
1: तो यादगार, मिलकर बहुत खुशी हुई थी
0: वो यादगार मुलाकात। फिर पता नहीं कब आपसे मुलाकात होगी मेरी, है कि नहीं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी कभी ना कभी।
0: बिल्कुल होगी। और तो बताइए, तो सबसे पहले जवाब बता दीजिए,
1: आज वो गाना है वो क्या है? बिजुरिया चमकी के ना, चमकी चमकी।
0: बिल्कुल। और गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: हेलो,
0: गाना कौन सा सुनना है? हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो आवाज, हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है? इनकी आवाज शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है इनके तरह।
1: अरे अरे
0: अच्छा, आ रही है, बताइए।
1: नहीं नहीं, अरे आवाज आ जाए, बिजुरिया चमकी के ना।
0: ओके, और गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: ये रफी साहब कह जी, कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पर चोटी लटके।
0: तो थोड़ा गा दीजिए ना, आप तो गाते हैं ना।
1: क्या है, थोड़ा खांसी जुकाम है, फिर भी गाता हूँ।
0: कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पर चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा, लगे 85 झटके, हो तेरा रंग।

0: पचासी झटके हो तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला।
1: और ये रहा अगला सवाल भी,
2: ये रहे रिवर्स गाने के बोल। मुस्काए तुम ही में मन, मुस्काए तुम ही में मन, सोचने जो बैठी जरा कुछ झरोखों को करके बंद, सोचने जो बैठी जरा कुछ झरोखों को करके बंद। आए नजर दूर बड़ी, आए नजर दूर तुम सांवरे, जो देखा मैंने झरोखों के अखियों के।
3: दोस्तों आपने सुना रिवर्स गाने के बोल, अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9133841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना।

0: रंग है नशीला अंग अंग है नशीला, रंग है नशीला अंग अंग है नशीला।
1: और इस पर बाजी मारे हैं हमारे दीपक कुमार गायकवाड़ जी, अमित तपड़े जी, गजानन सोनकार जी, प्रियंका जी, राजू राजेश कुमार जी, रमेश चौहान जी, ज्योति खरवड़े जी और काजल झका जी,

0: चला के।
1: और जिनका दो बार हुआ है वो तो फिर दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि अगर वो विनर बनते तो
0: लाले वहीं पे मेले लग जाए। तू देखे जहाँ पलट के हो गया दिल का पुर्जा, पुर्जा लगे 85 झटके। तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला, रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला।
1: दीपक कुमार गायकवाड़ जी, बहुत बहुत देर के बाद आपका नंबर लगा है, बहुत बहुत बधाई हो।
2: जी सर धन्यवाद, बहुत देर से मैं कोशिश भी कर रहा था और कई बार मैं लेट भी हो जाता हर बार की तरह।
1: जी तो लेकिन इस बार आपने सबसे पहले भेजा है।
2: हाँ इस बार जरा क्या कोई ग्राहक ग्राहक नहीं था दुकान पे, तो जरा मेरा दिल और दिमाग उस पर लगा रहा जरा।
1: अच्छा ऐसा है,
2: ग्राहकी आती रहती
1: है। तो मैं सोचूं कि भाई हमेशा फेल क्यों हो जाते हैं, है ना।
2: हाँ वो शाम के टाइम जैसे प्रोग्राम चालू होता है, आपका प्रोग्राम चालू होता है, इधर दुकानदारी का मेरा समय चालू हो जाता है। अच्छा। तो अब थोड़ा फुर्सत हो गई है तो जरा आसानी सुन रहा हूँ आपका प्रोग्राम।
1: कोई बात नहीं, कोई बात। फिलहाल अभी फुर्सत में तो सबसे पहला आपका मैसेज आ चुका है, तो बताइए गाना कौन सा है जो आपने पहचाना है।
2: अखियों के झरों के से तूने देखा जो झांक के।
1: हाँ बिल्कुल
2: ये गाना है सर।
1: और गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप
2: सर? ये दिल चाहता मूवी का है। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, ओ हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना।
1: अच्छा जी तो सुनवा दिया
2: ये गाना बना। जी सर धन्यवाद सर, गुड नाइट।

0: फिलहाल अगला सवाल मैं कर लेता हूँ यहाँ पे।
1: ये रहे रिवर्स गाने के बोल। हुआ तेरा मैं बेशर्त हमनवा, ओ हम सफर ओ है राही, चल साथ मेरे सांसे तो हो रहे, चल तुम मरना जीना मेरा तुमसे, करना ना शक भी सा थोड़ा है, रही ढल साथ तेरे शामे सारी तो मेरी, ठहरे तेरी बाहों में सवेरे सारे तो मेरे। दोस्तों आपने सुना रिवर्स गाने के बोल, अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9133841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना।

0: और लगता है कि शायद हमें दोस्तों ने उसका जवाब नहीं पहचान पाए हैं। नो प्रॉब्लम। तो एक मैं एक फिर सवाल कर लेता हूँ, अगला सवाल और आखिरी सवाल।
1: ये रहे रिवर्स गाने के बोल। राम जी वो आया घर पिया मेरा, वो आया बनाने पागल, लाया साथ भी तारे, लाया साथ भी चंदा, वो आया बनाने अपना, आया उठाने घूंघट, लाया बारात लाया। दोस्तों आपने सुना रिवर्स गाने के बोल। अब इसके सही गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9133841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाती रहो दिल से।

0: मेरे पास मैसेज बहुत सारे आ चुके हैं। सबसे पहले तो मैसेज पहुंचा हुआ है काजल झक्का जी का, एक बार फिर से ये विनर बन गई आज के लिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और राजू राजेश कुमार जी भी है, दीपक कुमार गायकवाड़ जी है, और नाम है सुनील कुमार जी, रूपचंद गोयल जी हैं, अजय भगत जी भी हैं, रवि मोहर जी हैं, जाकिर खान जी भी हैं, अमित तपड़े जी हैं, और एक नाम तो मुझे नहीं पता चल रहा है क्या नाम है जी भाई, यानी कि कविता कुमारी जी शायद यही नाम है हमारे ख्याल से, नाम बता दीजिए प्लीज, और यानी विष्णु चंद्र जी। तो फिलहाल कॉल लगाते हैं काजल झक्का जी को। फिर से बहुत बहुत आपको बधाई हो, और आज के इन विनर बनने के लिए भी बधाई हो काजल झक्का जी, क्योंकि आज आपने 3 सही जवाब दिया है। ओके, तो बताइए सबसे पहले जवाब।
1: हाँ, मेरा प्रिया घर आया वो राम जी।
0: ओके जी, बिल्कुल सही जवाब है। और आप क्या सुनना चाहेंगे ये भी बता दीजिए।
1: किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है।
0: ओह, किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता, अरे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।

और एक चीज का मैं खुलासा करना चाहूंगा कि मैं कल बताना भूल गया था कि यानी कि जो कल का प्रोग्राम हुआ था अंतरमसी, तो अंतरमसी के यानी फर्स्ट यानी विनर बनी थी यानी प्रियंका जी, और उनका नाम मैं लेना भूल गया था। तो कोई बात नहीं, आज मैं उनको स्पेशली कॉल करके उनके एक गाने को मैं जरूर प्ले करूंगा।

0: और इन प्रियंका जी आपको इन बहुत बहुत बधाई हो, आपका कल इन फर्स्ट इन विनर बनी हुई थी और मैं कल आपका विनर बनाना भूल गया था, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। हेलो,
1: हाँ कोई बात नहीं।
0: हाँ जी ओके, तो बताइए आज कोई स्पेशल गाना कुछ भी सुन सकते हैं जो दिल करे आपका।
1: गाना तो सुनना था,
0: बता दीजिए।
1: फोटो पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है।
0: ओहो, क्या गाना।
1: प्यार में पागल हूँ मैं, सुबह शाम जानो, आई लव यू, यू लव मी, ये सॉन्ग सुना दीजिए।
0: तो सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

0: बहुत बहुत वेलकम है संध्या पटेल जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया?
0: बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। आपकी दुआएं हैं। आज आपको स्पेशल कॉल किया गया है, तो आज स्पेशल कॉल में कोई भी गाना सुन सकती
1: है। बहुत अच्छा लगा,
0: जो दिल करे वो गाना सुन सकती है।
1: मेरे को आप वही वाला गाना सुना दीजिए जो मैसेज में कर रही थी, सारा सारा दिन तेरे बिन नहीं गुजरता।
0: एक मिनट जरा सा मुझे बताइए, सारा सारा दिन
1: तेरे बिन हाँ, नहीं गुजरता,
0: नहीं गुजरता यारा।
1: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल यही सॉन्ग है।
0: सारा सारा दिन तेरे बिन, ये किसका गाना है? मतलब मास्टर सलीम जी का?
1: हाँ।
0: ये तो लग रहा है कि सैड सॉन्ग है।
1: नहीं लेकिन मुझे अच्छा लगता है।
0: कोई बात नहीं, मैं आपको जरूर यानी कि सुनाऊंगा, लेकिन पता नहीं सैड सॉन्ग क्यों पसंद आते हैं यार, मुझे समझ में नहीं आता है।
1: नहीं मेरे ये रहता ना, मैं जो गाना मैं फर्स्ट टाइम सुनती हूँ ना, जैसे अभी मैंने एक दो दिन ये गाना सुना तो मेरे को अच्छा लगा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, हम अपने गाने को
1: बाकी जी जी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बाकी वजह कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे को अच्छे लगते
0: हैं। नहीं मैं अक्सर देखता हूँ ना कि आपको ज्यादातर मतलब यानी कि सैड सॉन्ग ही पसंद आते हैं, जहाँ तक मैं
1: ये तो मैं भोजपुरी सुनती हूँ या फिर ऐसे ही गाने मेरे को पसंद आते हैं।
0: या तो आप भोजपुरी सुनती हैं या अगर सुनिएगा तो ऐसे ही गाना सुनिएगा, एकदम बिल्कुल यानी कि मतलब क्या बोलूं सैड सॉन्ग,
1: मतलब गाने कोई भी हो बट ना ऐसे गाने ना मेरे को अच्छे लगते हैं।
0: कोई बात नहीं, चलिए सुनवा दीजिए, एंजॉय कीजिए
1: जी।

0: राजू राजेश कुमार जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। कैसे हैं?
1: जी बहुत बढ़िया सर, आप सुनाए, आप कैसे हैं?
0: अरे हम तो बहुत ही झकास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में चकाचक एकदम हैं, गारंटी के साथ।
1: जी आपका यही सभी साथ यही दुआ करते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही रहे।
0: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और कपिल भूटानी जी जुड़े हैं, वेलकम करते हैं। हाँ बताइए, तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे स्पेशल कॉल में?
1: इस स्पेशल कॉल में सुना दीजिए आप क्रांति फिल्म का गाना, पुरानी वाले क्रांति, लोहित तमाशा हुई
0: जी,
1: लोहित तमाशा हुई, लोहित
0: तमाशा। ओके जरूर मैं आपको सुनाऊंगा लोहित तमाशा, है ना?
1: हाँ जी।
0: ओके जी, बहुत दिन बाद ये गाना
1: सुनने को मिल रहा
0: है, सुनने को मिल रहा है। जी जी जी बिल्कुल, मैं तो भूल ही गया था कि ऐसे भी कोई गाना। फिलहाल इंजॉय कीजिए, गाना प्ले कर दिया है ना। ओके
1: ओके जी ओके।

0: फिलहाल अगला कॉल मैं लगा लेता हूँ। रवि महाराज जी का इसके बाद हमारे वो गजानन सरोकार जी रहेंगे। बहुत बहुत वेलकम है रवि मॉडल जी, कैसे हैं?
1: प्रणाम सर जी।
0: अरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बताइए।
1: और सुनाइए, आप कैसे हो?
0: बहुत ही अच्छे हैं।
1: बहुत ही शानदार प्रोग्राम, खूब मजा आ रहा सर जी। क्या बात है, क्या कहूँ मैं, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है।
0: थैंक यू सो मच जी। तो बताइए आज क्या सुनना पसंद करेंगे स्पेशल कॉल में?
1: सर वैसे तो खेल फिल्म का एक गाना सुनना था, खत लिखना है, पर सोचती हूँ ये कैसे कहूँ।
0: बिल्कुल, मैंने वही गाना प्ले कर दिया, एंजॉय कीजिए।
2: थैंक यू वेरी मच सर।

0: जी गजानन जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है स्पेशल कॉल में। और कैसे हैं आप?
1: आदरणीय एवं सर जी नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छा हूँ जी, बोलिए।
1: और आज का प्रोग्राम सर जी एक नंबर झका शानदार हो रहा है।
0: धन्यवाद धन्यवाद,
1: आपकी लाजवाब प्रस्तुति।
0: धन्यवाद। तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: संगीत फिल्म का गीत है सर जी, सात सुरों के तार बन गए तेरा मेरा प्यार। एक गीत सुनना चाहता हूँ और एक गीत बहुत दिनों से सुना नहीं सर जी।
0: सात
1: सुरों के तार बन गए।
0: अच्छा, ओके।
1: तेरा मेरा प्यार,
0: मैं ढूंढ रहा हूँ इस गाने को, आई होप कि मुझे मिल जाए।
1: संगीत, हाँ संगीत फिल्म का है।
0: संगीत फिल्म का तो है
1: जैकी श्रॉफ माधुरी दीक्षित,
0: वो तो मुझे भी पता है। संगीत फिल्म का गाना है जी,
1: सुरेश वाडकर का गया।
0: ओके, तो सुनवा, मैं सुनवा रहा हूँ आपके गाने को, एंजॉय कीजिए। ओके,
1: बहुत बहुत बहुत धन्यवाद सर।

के तो अब एक जाते जाते एक मैं गाना प्ले करके जा रहा हूँ और इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।

0: शिव मंदिर है। कहते हैं वहां जाकर सच्चे दिल से जो भी मुराद मांगो वो पूरी हो जाती है। किसी दिन ले जाऊंगा वहां, भगवान से मांग लूंगा तुम्हें
1: सच।

0: अरे साई तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

0: लोग हंस क्यों रहे हो?
1: हंस नहीं रहे दोस्त, रो रहे हैं तुम्हारी अकल पे और हम सबकी बेखूबी पर। एक दीवाने ने ख्वाब देखा जंगल में और उसकी तस्दीक के लिए हम सब दीवाने तुम्हारे दरबार में पहुंच गए।
0: ये दीवानगी नहीं, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से उन दो इंसानों को सांप बनते हुए देखा है। विजय, पहले तो तुम्हारी सिर्फ दिमाग पे शक था, अब मालूम होता है कि तुम्हारी आंखें भी जा रही हैं।
2: हम ये कैसे मान सकते हैं यार कि एक सांप जब चाहे इंसान का रूप धारण कर ले और जब जी में आए फिर से सांप बन जाए।
3: मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं।
1: मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है यार।
0: चंद साल पहले तुम्हारे जैसे लोग चांद पर जाने वालों पर ऐसे ही हंसा करते थे।
4: ओ फिलोसोफर साहब, आप अपनी फिलॉसफी से सच को झूठ में नहीं बदल सकते।
0: अरे भाई, ये इच्छाधारी सांप सदियों से है और जो बात सदियों से सच है वो आज भी सच है, समझे?

0: गोली किसे चलाई?
1: मैंने।
0: क्यों?
1: अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता।
0: वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है, और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ।
2: लेकिन अब क्या करूँ, पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती?
0: जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता। कहते हैं मरने वाले नाग की आंख में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है, और नागिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो खून का बदला न चुका ले।
3: तो अब क्या किया जाए?
0: किरण के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, हमें फौरन उस नाग को ढूंढ के जमीन में दबा देना चाहिए ताकि वो नागिन अपने नाग की आंख में इसकी तस्वीर न देख सके।
3: That's such.
0: हाँ चलो।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थीं और दिल धड़क धड़क के कह रहा था कि जॉनी बेटे, तेरी मंजिल यहीं पर है, लेकिन याद रख, अगर इन्हें मालूम हो गया कि तू चोर है, उचक्का है, छोटी मोटी चोरियों के इल्जाम में बार बार जेल जा चुका है, तो इन हसीन आंखों में तेरे लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं रहेगा।

0: समझो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

ताली दी जय और बोलो साथ में अपनी भी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं घरवाली की जय।